0: हमारा आपसे आखिरी सवाल है, कपड़े गंदे हो जाएं तो क्या करते हैं?
1: अलमारी में छिपा देते हैं।
0: अरे वाह, उन्हें धोने की बजाय आप छिपा देते हैं। बेहतरीन मोंटी जी, क्या गलत जवाब दिए आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू थैंक यू।
2: तो चलिए दोस्तों, तौहीद और अपनी सवारी को ले चलते हैं थोड़ा सा और आगे और पहुंच जाते हैं अपने एक और युवा साथी की तरफ, जिनसे हम बात करने वाले हैं हमारे सेगमेंट अरे दीवानो मुझे पहचानो के अंतर्गत। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने युवा साथी का नाम। आपका नाम?
3: निशा।
2: निशा, तो हमारा एक सेगमेंट है यूथ कनेक्ट, जिसमें हमारा सब सेगमेंट होता है अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो आपको अपने अंदर की कोई एक पॉजिटिव पॉइंट बताना है जो कि आपको सबसे अलग करता है, और उसी के बिहाफ पे आपको अपने अंदर की एक गलत चीज बतानी है जो कि आपको नहीं पसंद और आप उसको दूर करना चाहती हैं।
3: सो फर्स्टली मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहूँगी, जो कि है, लोगों को लगता है कि मैं अलोन टाइप ऑफ पर्सन हूँ, बट मुझे लगता है कि वो मेरी स्ट्रेंथ है जो मुझे स्ट्रांग बनाती है। समटाइम मैं जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाती, तो वो लोगों को लगता है कि ये इसका वीक पॉइंट है, बट मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं स्ट्रांग हूँ। और मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो कभी कभी उसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है।
2: आपके दोनों ही पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, और ये बात तो सही है कि जो हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें लोगों से थोड़ी दूरी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसी की तरह लोगों को भी लगता है कि ये थोड़ा कम बोलती है, इंटरेक्ट नहीं होती है, ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, वो आपके लिए अच्छा पॉइंट है। तो आपको हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़कर कैसा लगा?
3: जी बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू सो मच।
0: सो सना, बढ़ते हैं आगे अपने इसी सब सेगमेंट अरे दीवानो मुझे पहचानो के अंतर्गत, और मिलते हैं हमारे अगले युवा साथी से।
2: आपका नाम?
4: जी ऋतिक कुमार।
2: ऋतिक कुमार, तो हमारा सब सेगमेंट होता है अरे दीवानो मुझे पहचानो, जिसमें आपको बतानी है अपने अंदर की कोई एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट।
4: जी मैं बताने के लिए तैयार हूँ।
2: ठीक है, तो स्टार्ट करिए।
4: जी मेरे अंदर तो एक अच्छा ही है कि मेरे घर वाले का मानना यह है कि मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में, और मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। जितने भी बाहर के काम होते हैं, अंदर के काम होते हैं, सभी मैं ही करता हूँ। घर वाले मानते हैं कि इतनी छोटी उम्र में सारे काम मैं ही करता हूँ घर के। और मेरे अंदर की एक ये कमी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और एक कमी यह है जो मैं स्टडी करता हूँ ना, उसके 2-3 दिन बाद ही भूल जाता हूँ, मतलब ज़्यादा देर तक याद नहीं कर पाता हूँ। ये कमी मैं अपने ही दूर करना चाहूँगा।
2: ठीक है, वैसे ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि घर का जो छोटा बच्चा होता है वो घर के भी और बाहर के भी सारे ही काम करता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपकी स्टडी से रिलेटेड बात है, तो उसमें मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि जो भी आपने एक दो दिन पहले पढ़ा हो उसको कंटिन्यूअसली ज्यादा टाइम ना हाफ एन आवर देके उसको रिवाइज करो, फिर उसके आगे का आप कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच। आपको हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़कर कैसा लगा?
4: जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके प्रोग्राम डेली सुनता हूँ, जो युवानी का प्रोग्राम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। थैंक यू।
0: सो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट यूथ कनेक्ट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे इस अगले खूबसूरत गीत की ओर।

0: सो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में, और उम्मीद करते हैं आपको एक शानदार शाम पसंद आ रही होगी और कार्यक्रम में आनंद भी मिल रहा होगा। और अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है एक बात काम की।
1: हे मिस्टर, क्या आप जानते हैं?
2: क्या
1: वो है बात एक काम की?
2: नहीं।
1: खामोश, तो आओ सुनो, छोटी सी बात बड़ा काम, एक बात काम की।
0: सना, मेरा तुमसे एक सवाल है।
3: बिल्कुल पूछो।
0: हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है?
3: दिल?
0: नहीं नहीं वो तो टूट जाता है।
3: फेफड़े?
0: नहीं वो भी नहीं।
3: अच्छा, तो फिर दिमाग ही होगा, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा बातें चलती रहती हैं।
0: दिमाग में बातें कितनी भी चले सना, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग दिमाग नहीं है।
3: तो फिर ऐसा कौन है जो हमारे पूरे शरीर को ढककर बैठा है और हमें पता भी नहीं?
0: वो है स्किन, यानी त्वचा।
3: ओह, मतलब हमारी स्किन सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर है, इसीलिए ये सबसे बड़ा अंग है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, फिर से एक बार सना।
3: तौहीद, स्किन तो हमारे शरीर की 24/7 सिक्योरिटी गार्ड निकली।
0: जी हाँ बिल्कुल, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड है। और एक एवरेज अडल्ट के स्किन का वजन लगभग 3.5 किलो से 10 किलो तक हो सकता है, और इसका सरफेस एरिया लगभग 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। और बात करें इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस लगभग 1 से 2 mm तक हो सकती है एक एवरेज अडल्ट इंसान के अंदर। तो आज की एक बात काम की में हमने जाना, शरीर का सबसे बड़ा अंग कोई अंदर छिपा ऑर्गन नहीं बल्कि वो है जिसे हम रोज देखते हैं। और सना, जिस पर तुम अपने गालों पर रोज ब्लश लगाती हो ना, हाँ वही, और जिसको हम फील भी कर सकते हैं, और वो है हमारी स्किन।
3: तो ये तो था हमारा सेगमेंट एक बात काम की। अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
4: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
5: LIC हर पल आपके साथ।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
7: सर, 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
8: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
9: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
8: आपका साइबर रक्षक।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: दोस्तों, कुछ जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं आगे इस एक और खूबसूरत गीत की ओर।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: दोस्तों ले चलते हैं आपको हमारे आज के नए सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है दूध का दूध पानी का पानी।
1: जो सुना है बचपन से, क्या वो सच है या है सिर्फ सुनी सुनाई कहानी? आओ पता करते हैं, क्योंकि सेगमेंट है दूध का दूध पानी का पानी।
0: बचपन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमने कभी सवाल ही नहीं किया, बस मान लिया। और उन्हीं में से एक बात है।
2: जी हाँ, उन्हीं में से एक बात है, रात में पेड़ों के नीचे मत जाना, वहां भूत होते हैं। या फिर मेरी तो दादी ये भी कहा करती थी कि रात को पेड़ों के नीचे मत सोना, वरना पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा छोड़ते हैं कि

0: आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है।
1: बिल्कुल, दादी नानी की ये बातें सुनते ही रात में पेड़ तो दूर उसकी परछाई से भी डर लगने लगता था।
0: बिल्कुल सही कहा सना, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता था? क्या सच में रात होते ही पेड़ों के नीचे भूतों का डेरा लग जाता है, या फिर वाकई वो इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी है?
1: तो चलिए आज इसी डर को करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी।
0: जी हाँ, सच तो यह है कि रात में पेड़ों के नीचे भूत होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, और बात रही कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ रात में जरूर छोड़ते हैं, लेकिन
1: लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाता है, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक ह्यूमन बॉडी पर कोई भी गलत असर नहीं करती।
0: जी हाँ, लेकिन पुराने समय में रात के अंधेरे में पेड़ों के नीचे जाना सच में सही नहीं माना जाता था।
1: कम रोशनी में पेड़ की टहनियां, पत्तों की हलचल और उसकी परछाई अजीब आकृतियों जैसी लगती थी।
0: तो सना, अब उठाते हैं इस राज के ऊपर से पर्दा कि आखिर हमें ऐसे क्यों कहा जाता था। रात में दोस्तों कीड़े मकोड़े या दूसरे छोटे जीव भी पेड़ों के आसपास हो सकते थे।
1: इसी वजह से शायद बच्चों को डराकर ये कहना आसान था, वहां भूत है मत जाना।
0: हाँ, क्योंकि बच्चों के अंदर चुल तो होती है, वो कहना नहीं मानते और वो जबरदस्ती चाहते जरूर है, तो इसीलिए हमारे बड़े कहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तुम फूल जाओगे, तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, तुम वहां मत सोना पेड़ों के नीचे, या फिर रात को छमछम चुड़ैल उठाकर ले जाएगी।
1: इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भूत वाली बात मिथ, लेकिन रात में अनजान और सुनसान जगहों पर सावधानी रखना बिल्कुल रियल।
0: जी हाँ, तो अगली बार जब कोई कहे रात में पेड़ों के नीचे मत जाना, वहां भूत होते हैं, तो डरने से पहले सोचना कहीं इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल वजह तो नहीं है।
1: यही है दूध का दूध और पानी का पानी, जहां बचपन से सुनी बातों का होता है सच से सामना।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा सेगमेंट दूध का दूध पानी का पानी। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक किस्से के साथ। तो अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे हमारी कहानी के उस पार की कहानी का एपिसोड नंबर 3। तो आइए सुनते हैं।
2: उस रात सरोज अपने बिस्तर पर अकेली बैठी रही। बाहर बारिश थी, कमरे में घड़ी की आवाज और हाथ में वही मोबाइल जिसे वो बार बार देखती फिर रख देती। शायद वो बेटे को दोबारा फोन करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं किया। शायद उसे लगा जिसे जगाने के लिए अपनी तकलीफ बतानी पड़े, उसके सामने तकलीफ कैसी। सुबह हुई, शहर को किसी की रात से कोई मतलब नहीं था। दूध वाला आया, अखबार वाला, लिफ्ट चली, बच्चे स्कूल गए, ऑफिस जाने वाले लोग नीचे उतरने लगे। किसी को नहीं मालूम था कि उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर एक औरत ने रात अकेली काटी है। सामने वाली लड़की रिया, वो भी ऑफिस के लिए निकली। लिफ्ट में उसकी नजर सरोज के दरवाजे पर पड़ी। उसे पिछली रात की आवाज याद आई। उसने मन में सोचा शायद अब ठीक होंगी। फिर मोबाइल देखा, ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो वो चली गई। नीचे गार्ड ने पूछा, मैडम तीसरी मंजिल वाली आंटी ठीक है ना? रिया ने कहा, पता नहीं। गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल रात उनकी आवाज आ रही थी। रिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप गए नहीं देखने? गार्ड ने नजर झुका ली, सोचा कोई घर की बात होगी मैडम। फिर वो अपने रजिस्टर में कुछ लिखने लगा। बस इतना ही, ना कोई दोषी था ना कोई निर्दोष, सबके पास अपनी अपनी वजह थी, और शायद शहर की सबसे बड़ी बेरुखी यही है। यहाँ किसी को पत्थर बनने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग बस अपनी अपनी मजबूरियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरे का दर्द दिखाई देना बंद हो जाता है।
0: दोस्तों, भी आपने सुनी हमारी कहानी के इस पार में आप आज की कहानी का एपिसोड नंबर 3। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, और कल आपको सुनने को मिलेगा इसका एपिसोड नंबर 4। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम और ये खूबसूरत ढलती शाम पसंद आ रही होगी, और बिल्कुल आ रही होगी। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और ये कार्यक्रम सना बिल्कुल अपने अंतिम चरणों पर आ गया है और घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब थोड़ा वक्त करीब है समाप्ति का। और उससे पहले, लेकिन उससे पहले सना, हमारे बुजुर्ग जाने के सवाल के अंतर्गत पूछे गए सवाल का बता देते हैं हमारे सभी

0: को उसका सही जवाब। तो हमारा
1: बिल्कुल तौहीद। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था सवाल। सवाल था, पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? और इसका सही जवाब है पंडित विष्णु शर्मा।
0: जी हाँ, और इस सवाल का सही जवाब देने वालों के नाम है सुदर्शन शाह, चंदू कुलकर्णी, नरेन नितम, विष्णु मिस्कीन, बालकरण वर्मा, ननक खन्ना, आबाद खान, हीरामणि वर्मा, मोहम्मद रफीक पवार, अनिल विनोशा, दिनेश वर्मा, गुरमीत सिंह मीता, योगीराज मस्के, बी.आई. धाकड़, धर्मेंद्र छीपा, बबलेश पनवर और नवी हसन अब्बासी, हरीश शर्मा, अनिल बी कोटके, शहरनूर अंसारी, गजानन येले, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान, मोहम्मद सईद अब्बासी, यूनुस खत्री, मोहम्मद खलील कुरैशी, दीपेश वर्मा, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सदाशिव शाहजी भोटके, राजकुमार दूदी, मुकेश कश्यप, विठल सुरोहे और राहुल पाल। तो ये तो वो सभी दोस्त जिन्होंने हमारे सवाल का दिया था सही जवाब। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम खूबसूरत गीत की ओर।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं हमें मैसेज करके बताइएगा ज़रूर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 और आप हमें ख़त भी भेज सकते हैं। ख़त के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467।
1: दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है AIR नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @ARNBD। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां और आने वाले प्रोग्राम्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ अपनी साथी सना
0: और मोहम्मद तौहीद को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बज रहे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और प्रमोद भैया क्या हो रहा है?
1: अरे भैया सब ठीक ठाक है, देखो सब बढ़िया चल रहा है खेती बाड़ी में। तो जहां तक बात है भाई, मुंजी की कटाई लगभग पूरी सी हो गई, क्योंकि भैया हमने पहले लगा दी थी और अब तो भैया गन्ने की कटाई भी बस शुरू होने वाली
0: है। देखो जहां तक मुंजी कटाई की बात है ना,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो जिन भाइयों ने भैया मुंजी टाइम से लगा दी
1: जी
0: तो भैया वो तो अब पक्का तैयार हो गई।
1: हाँ
0: और भाई बात यो हो रही है कि अब 10 तारीख तक थोड़ा बादल बदली का मौसम है, इसे देख तो किसान भाई थोड़ा झिझक रहे हैं। लेकिन
1: हाँ
0: भैया अगर मुंजी की कटाई कर दें
1: जी
0: और वो भी भैया थोड़ा सा ऊपर से कर दें।
1: हाँ भाई, इन्नू कह रहे हैं कि कम से कम 7 इंच तो छोड़ना ही चाहिए नीचे की तरफ।
0: भाई देखो 6-7 इंच ऊपर से अगर काटेंगे तो फायदा ये होगा कि किसी भी दशा में जो बीज है वो
1: जी
0: जमीन से की
1: नहीं
0: सतह
1: लगने
0: बनेगा,
1: देंगे।
0: टच नहीं होने का।
1: हाँ हाँ
0: तो जब ऊपर ऊपर टंग जाएगा तो इतनी ज्यादा तगड़ी बारिश तो होनी नहीं है कि भाई पानी भर जाएगा, तो क्या होगा कि भाई बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पानी नहीं चढ़ जाएगा, दिन में धूप होगी और बस कोई नुकसान होने का नहीं। सबसे बढ़िया बात यह है कि दाने पर चमक बनी रहेगी
1: हाँ
0: और भैया उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आने की।
1: यही तो बात है भाई, देखो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना। अब भाई फसल जब कट गई, हमें लग रहा है कि हमारी धान की फसल बिल्कुल तैयार है, सुनहरी हो गई, इसको काटना तो काट लेना चाहिए, बस मौसम का ध्यान रखना चाहिए भाई। हाँ अगर ज्यादा तेज बादल बदली का लग रहा है तो थोड़ा सा रुक जाएं, नहीं तो भैया जैसा कह रहे हैं कि अगर 6-7 इंच छोड़ कर नीचे से काटेंगे और भाई जो हमारा दाना है, जो बालियां हैं, अगर वो हम जमीन के संपर्क में नहीं आने देने के, तो धान की फसल हमारी ठीक ठाक रहेगी।
0: मैं देखो आजकल एक खतरा रहता,
1: हाँ
0: देखा होगा जैसा आज भी मौसम ऐसा हो रहा है, हवा चलने का डर है।
1: ये तो है भाई।
0: और भाई धान में आप जानते होंगे नमी तो रह वही है, और जब बाली पक जा है ना ऊपर से तो उसमें
1: हाँ
0: वजन भी हो जा,
1: बिल्कुल
0: तो हल्की सी हवा से जो है
1: गिर
0: गिरने
1: जाए
0: का डर है। और
1: जी।
0: मुंजी की विशेषता यो है कि वो एक एक साथ कम गिरे, चारों तरफ को बिखर गिर जा,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो उससे दाना खराब हो जा भैया बहुत।
1: अब भाई दाना नीचे भी गिर जाएगा
0: हाँ
1: और उसकी जो गुणवत्ता है भाई वो भी खत्म सी हो जाए, बहुत ही बढ़िया धान वो फिर रह नहीं जाता।
0: देखो धान नाजुक फसल तो है ही
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई, जरा से एक दाना भैया मिट्टी में दब गया तो उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, और भैया गिल्ला रह जा, ज्यादा सूख जा तो बड़ी परेशानी
1: हाँ
0: हो जाएगी।
1: जी जी
0: कुल
1: जी
0: मिला के जो है भैया बहुत सोच समझ कर हमें काम लेना है, सतर्कता से काम लेना है, और भैया मौसम की जानकारी भी लेते रहो और उस हिसाब से भैया कटाई पर ध्यान दो।
1: बिल्कुल। पर भैया देखो ये सारी बात तो हम कर ही रहे हैं, मौसम का ध्यान भी हमारे किसान भाई रखे ही हैं और भाई मौसम की जानकारी हम अपने इस कार्यक्रम में किसान

0: भाइयों को बताना भी है,
1: ठीक।
0: आज भी बता देंगे। पर भाई यो तो बताओ, आज के कार्यक्रम में तुम जानकारी कौन कौन सी लेकर आए हो?
1: मैं देखो, अब जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा
0: हाँ
1: तो सबसे बड़ी बात तो यह है, आज हम ऐसी जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई, अब भैया जो एकीकृत खेती कर रहे हैं,
0: अच्छा
1: जैसे भैया किसी किसान भाई ने भैया खेत में बो रखी फसल, चाहे गन्ना बो
0: हाँ
1: रखा, चाहे
0: हाँ
1: गेहूं बोए, चाहे धान बोया है, इससे जुड़ी हुई चीज,
0: अच्छा
1: जैसे भैया गेहूं या कोई भी हमारी फसल है उसके साथ पशुपालन,
0: हाँ
1: या फिर इनसे जुड़ा हुआ भैया मछली पालन, इनसे जुड़ा हुआ भैया मौन पालन, या इनसे ही भैया और जो हमारे मसाले हैं उन सब भैया हम क्या करें, मसाले बना लें, पीस लें, या फिर भैया तिलहन हम पैदा कर लें तो उससे तेल निकाल लें, तो इस तरह के जो सहायक व्यवसाय हैं उन्हें जो लोग कर रहे हैं, तो ऐसे एक भैया सफल कृषक से बातचीत कराऊंगे।
0: ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी भाई, और किसान भाई अगर इस बातचीत को सुनेंगे तो उन्हें भी बड़ा लाभ होगा, और किसान भाइयों का मनोरंजन भी हम करावेंगे। बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पर भैया अभी जरा कुछ ये संदेश सुनो ले हैं।
1: ठीक है भैया, सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
2: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
3: LIC हर पल आपके साथ।
4: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
5: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: गंगाराम भैया।
2: हाँ प्रमोद भैया।
1: देखो, संदेश हमने सुन लिए।
2: बिल्कुल।
1: और भाई, हम बात यूँ कर रहे थे कि भाई हम मुंजी की फसल को काट रहे हैं, खेत खाली होते चले जा रहे हैं, दूसरी फसल भी देखो भैया अब हमें बोनी है उसमें।
2: ठीक ठीक ठीक।
1: तो दूसरी फसल जो अब हम खास तौर से गेहूं की हम बोवेंगे, रबी की फसलें बोने का टाइम आ ही गया, तो भैया फसल बोने के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी हो रहा है।
2: भाई देखो, हमारे किसान भाइयों की अब भूमि तीन प्रकार से खाली होगी। एक तो भैया वे हैं कि जो मुंजी काट के खाली करेंगे।
1: जी जी।
2: एक भैया चारा काट के खाली करेंगे।
1: हाँ।
2: और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो भैया शीघ्र जो है गन्ना भी काट लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो जो जमीन हमारी खाली होगी, तो हमारे दृष्टिकोण से सबसे पहले हमारे किसान भाई को चाहिए यही हो कि मिट्टी की जांच करा दें। भैया
1: देखो भाई, मिट्टी की जांच करानी बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: और हम अपने इस कार्यक्रम में बार बार अपने किसान भाइयों को ये बताते भी रहे हैं कि भैया जो भी अगली फसल हमें बोनी है, उसको बोने से पहले खेत का नमूना लेकर मिट्टी का, और उसको अगर हम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंचा कर उसकी जांच करा लेंगे, तो भैया हमें यू पता चल जाएगा कि अब जो फसल हम बोने वाले हैं, उस फसल को बोने के लिए हमारे खेत को किस चीज की जरूरत है।
2: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो भैया इसके लिए हम किसान भाइयों को यो बता देते हैं कि भैया मिट्टी का नमूना कैसे लें।
1: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो, बात यो है, मिट्टी का नमूना लेने के लिए आप अपने खेत का चयन कर लो
1: जी
2: कि भैया कौन से खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना है, और उसमें 5-6 जगह से भैया मिट्टी ले लो
1: जी।
2: मिट्टी लेने के लिए भैया वी के आकार का, अंग्रेजी का अक्षर वी जैसा हो।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: और वी का मतलब क्या है, एक तरफ से फावड़ा मारो और दूसरी तरफ से मट्टी निकाल दो।
1: बिल्कुल।
2: तो जो गड्ढा बनेगा उसकी मट्टी छील लो और छील कर भैया एक कपड़े पर वो इकट्ठी कर लो।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसी 7-8 जगह से जो गड्ढे होंगे उनमें मट्टी इकट्ठी कर लो। पर एक बात का ध्यान रखना भैया, मट्टी जो ले
1: जी
2: वो नाली के पास से ना ले
1: जी,
2: पेड़ की छांव से ना ले। साथ साथ भैया जो कूड़ी का ढेर आपने लगा रखा होगा या भैया कूड़ा डाल रखा होगा उसके नीचे से, उसके आसपास से ना ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और भैया छायादार स्थान पर से ना ले
1: जी जी जी।
2: तो ऐसे आपने लेके भैया मिट्टी एक जगह इकट्ठी कर लो और फिर भैया हाथ से उसको मसल का बिल्कुल बढ़िया करके मिला लो।
1: बिल्कुल ठीक बात।
2: और मिलाने के बाद भैया उस मिट्टी को आधी कर दो।
1: अच्छा।
2: आधी मिट्टी तो रख लो और आधी को
1: अलग कर दो।
2: अलग कर दो
1: जी जी जी।
2: फिर उस मिट्टी को फिर दोबारा से मिलाओ। और ये प्रक्रिया जब लो करनी है, जब तक मिट्टी जो है 1 किलो के करीब ना रहेगा।
1: अच्छा।

0: भैया फिर तो वो नमूना तैयार ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल आप भैया आधा किलो मिट्टी के करीब करके कपड़े की थैली में भरना भैया।
0: अच्छा, प्लास्टिक की थैली में नहीं भरना। और भैया ध्यान यो रखना कि वो जो कपड़े की भी थैली होगी वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके
1: ठीक
0: ऊपर भी स्लिप लगी होनी चाहिए, और उसके अंदर भी एक स्लिप अगर हम लिखकर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल भैया, उस पर आप अपने खेत की पहचान पर लिखा, खेत का भैया खसरा नंबर लिख दो, खतौनी नंबर लिख दो, या भैया आपने अपना डहर वाला खेत, बांगर वाला खेत,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: या भैया जो भी खजूरी
0: शीशम
1: वाला
0: वाला खेत,
1: खेत,
0: खजूरी वाला खेत, सही कह रहे हो भैया, एक
1: जो भी
0: पहचान होए कराए।
1: नाम रख रखा हो भैया, अपना नाम अपना फोन नंबर लिखकर और भैया दे दो।
0: मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में उसको पहुंचा दें, और वहां भैया जो नमूना हम देख कर आ रहे हैं तो वहां से हमें भाई जो भी व्यक्ति वहां पर है उसका फोन नंबर जरूर ले लें,
1: बिल्कुल
0: ताकि हमें यो पता चलता रहे कि हमारे खेत की जो मिट्टी है, जो हमने नमूना दिया, उसकी जांच हुई या ना हुई।
1: देखो एक बात है, हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मिट्टी की प्रयोगशाला का पता नहीं रहता।
0: हाँ
1: तो हम सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताना चाह रहे हैं कि हर ब्लॉक में जो भैया एडीओ एग्रीकल्चर होते हैं
0: जी,
1: या भैया किसान सहायक होते हैं,
0: उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी का कार्यालय भी होए करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या भैया जिले में जो है आपको पता ही है कृषि के बहुत सारे कार्यालय रहते हैं,
0: हाँ
1: उनसे संपर्क कर सकते हैं, या हर जिले में लगभग कृषि ज्ञान केंद्र है
0: बिल्कुल,
1: तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आपको मिट्टी का परीक्षण आसानी से हो जाएगा। और अब तो बहुत सारी जो चीनी मिलें हैं ये भी परीक्षण करा रही हैं।
0: तो देखो भाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर कृषि विज्ञान केंद्र पर ये प्रयोगशाला बनी हुई है।
1: ठीक
0: जिले में जो भैया जो हमारे कृषि के अधिकारी हैं, जिला स्तर पर भी ये मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनी हुई है, हम वहाँ पर ये नमूना पहुँचा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, जो कृषि के जो प्रतिनिधि हमारे गांव में आते हैं भैया,
1: हाँ
0: उनको भी हम ये नमूना दे सके हैं।
1: बिल्कुल, बस एक बात करें कि जिसे भी आप नमूना दो
0: जी
1: उसका फोन नंबर ले लो
0: बिल्कुल,
1: और भैया उसे फोन करके खड़खड़ाते रहो, भैया हाँ क्या होया हमारी प्रयोग मिट्टी की परीक्षण का। और भाई जब आपकी मिट्टी का परीक्षण हो जाएगा
0: जी,
1: तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो मिट्टी है वो भैया अम्लीय है या क्षारीय है, किस पोषक तत्व की अधिकता है, किस पोषक तत्व की कमी
0: कमी
1: है,
0: है
1: तो भैया वही चीज़ या उसी की पूर्ति हम कर दें।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: भैया अंधाधुंध जो आप पैसा खर्च कर रहे थे यूरिया पर या भैया डीएपी पर या जिस चीज़ पर भी कर रहे थे, तो वो ये अंधाधुंध पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पोषक तत्व की आपकी ज़मीन में कमी है उस पोषक तत्व की पूर्ति कर दो।
0: और उतनी मात्रा में डालो जितना आपको बताया गया है, क्योंकि वहां से भैया एक वो बने करे
1: सॉयल हेल्थ कार्ड।
0: सॉयल हेल्थ कार्ड, उस कार्ड में जो लिखा रह करे है उसी के आधार पे खेत में इन पोषक तत्वों की पूर्ति करके भैया हम अच्छी फसल लेंगे। और देखो जो आपने भी कहा कि हम अंधाधुंध तरीके से जो है इनका प्रयोग करते चले जाएं, तो उससे बचेंगे तो भैया 4 पैसे भी बचेंगे।
1: ठीक है, तो भैया अपने पैसों को बचाने के लिए हो, अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए,
0: जी
1: अच्छी आमदनी लेने के लिए हो, हम अपने किसान भाइयों से विशेष अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आप मिट्टी का परीक्षण जरूर करावें।
0: बिल्कुल, और देखो मिट्टी परीक्षण किसान भाई जरूर करावेंगे। भैया आपने आज कार्यक्रम में एक बात बताई थी, हम तो भैया तभी से यो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, किसान भाई भी बड़े इस समय उत्सुक होंगे कि भैया जो आज जानकारी उनको हम दिलवाने वाले हैं वो जानकारी भला कब सुनने को मिलेगी।
1: भैया देखो हमने बात ये करी थी एकीकृत खेती की, है ना,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एकीकृत खेती क्या होती है,
0: जी
1: क्या इसका महत्व है, और भैया कैसे करी जाती है, और किस प्रकार से भैया इस खेती को करके हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं, तो इन सब बातों का या इन सब रहस्यों को भैया पर्दा उठाते हैं।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: क्यों ना जानकारी दी जावे भैया।
0: बिल्कुल, तो भाई आप सुनते हैं एकीकृत खेती का महत्व के संबंध में सफल कृषक द्विजेंद्र कुमार से भैया आलोक कुमार गंगाराम जी की यो बातचीत।
1: किसान भाइयों, हम सब खेती तो करते हैं लेकिन हमारे जो कुछ जागरूक किसान भाई हैं वो एकीकृत कृषि करते हैं, यानी कि एक साथ कई चीज़ें करते हैं, जैसे किसी ने गन्ना बोया है तो उसके साथ सह फसली करते हैं, और उसके साथ साथ मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, या डेयरी व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह की खेती करने वाले किसान से हम आज मिले। आपका नाम?
2: द्विजेंद्र कुमार।
1: द्विजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितनी ज़मीन पर आप खेती करते हैं?
2: लगभग हमारे पास 45 बीघा जमीन है।
1: अच्छा, संयुक्त परिवार?
2: संयुक्त परिवार है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं।
1: अच्छा
2: 3 भाई हैं हम,
1: जी,
2: तीनों एक ही साथ पिताजी के
1: निर्देशन में काम।
2: निर्देशन में काम करते हैं,
1: जी
2: वही हमें जो है दिशा निर्देश करते हैं।
1: जी देखिए बहुत अच्छी बात है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर खेती की बात करें तो मुख्य फसल क्या होते हैं आप?
2: हमारी मुख्य फसल तो गन्ना है।
1: अच्छा,
2: गन्ने के साथ हम बीच में सरसों, आलू, अलसी, ये सब चीजें भी हम उसमें डाल के हम मिश्रित खेती के रूप में भी हम गन्ना पैदा करते हैं।
1: तो मतलब जो आपका गन्ना है वो ट्रेंच विधि से बोते होंगे?
2: हाँ जी, हम ट्रेंच विधि से भी बोते हैं और 5 फीट की दूरी पर हम मोस्टली गन्ना जो हम बो रहे हैं, क्यों हमारे पास सारे उपकरण जो हैं वो सब मशीनरी से हमारा वर्क चलता है, तो सारे उपकरण हैं हमारे पास लगभग, तो हम चौड़ी टेक्निक से ही गन्ना बोते हैं ताकि उसमें हमें जो है बैलों का सहारा ना लेकर हम मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल कर सकें।
1: क्या क्या उपकरण आपके पास हैं?
2: हमारे पास 2 बड़े ट्रैक्टर हैं, छोटा ट्रैक्टर है, छोटे ट्रैक्टर के सारे उपकरण हमारे पास हैं, बड़े का रोटावेटर है, गाय मशीन खुद की है, अपना पूरा मतलब व्यवस्थित खेती है हमारे।
1: अच्छा, अच्छा। तो देखिए आपने बताया मिश्रित खेती करते हैं, तो गन्ना जो आपने बोया है उसके बीच में कौन कौन सी फसलें इस समय उगा रखी हैं?
2: इस समय जो है जो हमारा गन्ना है अभी तो गन्ना परिपक्व हो गया, उसके अंदर कोई इस वक्त कोई फसल नहीं है, वो सारी फसल पहले ले चुके हैं हम उसमें से।
1: अच्छा।
2: अभी हमने उसमें से जो लास्ट टाइम जो हमारा ये फसल ली थी हमने, तो उसमें अलसी लगाई थी।
1: अच्छा।
2: तो अलसी की बहुत अच्छी पैदावार उसमें हुई थी। अलसी में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें कोई जानवर जैसे माहे हैं या फिर आजकल पशुओं को छोड़ रहे हैं किसान, तो वो कोई भी उसमें नुकसान नहीं करता है।
1: अच्छा,
2: अलसी में ऐसी कोई नुकसान नहीं है जिससे हमें कोई परेशानी।
1: अच्छा, तो देखिए तो एक फायदे की बात ये हुई। अब इसके साथ साथ हम कृषि को अगर थोड़ा सा एक तरफ करें तो और क्या काम करते हैं?
2: जी, हमारे यहाँ हमने चक्की लगा रखी है, मसाले की और आटे की दोनों चक्कियां हैं।
1: अच्छा।
2: और हमने स्पेलर लगा रखा है, जैसे हमने अलसी अभी बताया, अलसी, सरसों, ये सब हम दलहन की फसल भी उसमें करते हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट ही तैयार करके हम गेहूं भी जो हमारा जो एक्स्ट्रा होता है वो हम गेहूं भी पीस कर जो है आटे के रूप में बेचते हैं, और मोस्टली हमारा गेहूं सब बीज में जाता है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम उसे ट्रीटमेंट करके बहुत अच्छे तरीके से जो है संभाल के रख देते हैं, और लगभग हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हमारा बहुत ज्यादा गेहूं सब जो है
1: बीज में
2: जाते हैं। हम जो गन्ना बोते हैं वो भी हम इसी तरीके से बोते हैं कि अच्छे से उसे शोधित करें और बढ़िया गन्ना तैयार करके हम बीज में लोगों को सप्लाई, हम उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ नहीं लेते लोगों से, क्योंकि जो है सब किसान लोग हैं हम अपना, जब सब तीनों भाई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हम अच्छी खेती करके जो गन्ना पैदा होता है ट्रीटमेंट करके वो हम उसी रेट पर जो मिल का रेट है सेम रेट पर हम औरों को दे देते हैं, उनके बदले वो हमें गन्ना दे देते हैं या पैसे दे देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, देखिए तो बहुत अच्छी बात है कि एक सहयोग की भावना भी आपके अंदर है। पशुपालन भी क्या होगा?
2: जी, हमारे यहाँ पशुपालन है, हमारे यहाँ 7 गाय हैं और 3 भैंसे हैं।
1: अच्छा।
2: तो डेयरी में हमारा दूध जाता है, गांव में हमारे यहाँ डेयरी है, वहाँ पर दूध बेचते हैं, तो दूध से भी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ होता है।
1: हाँ।
2: साथ में हमें गोबर और ये सब चीजें भी जो है खेत में डालने के लिए प्राप्त हो जाती है, तो बड़ा अच्छा हमारा वर्क जो है, हम इस वक्त मिश्रित खेती के साथ साथ एकीकृत खेती के और हम जो है जागरूक है, और सभी लोगों से भी ये कहते हैं कि इसमें फायदा है, अगर हम एक ही चीज को लेके चलेंगे तो शायद इनकम ना हो या नुकसान देखने को मिले, लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करें तो संभवतः लाभ ज्यादा होगा।
1: देखिए अभी आपने एक बात बताई कि हम जो है अपना जो भी प्रोडक्ट होता है, चाहे वो गेहूं हो या आपके दलहन हो या तिलहन हो, उसको मतलब जैसे तिलहन का तेल निकाल के बेचते हैं, तो इसके बेचने की क्या व्यवस्था होती है?
2: नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ तो निजीवास तक से लोग आते हैं खरीदने।
1: अच्छा,
2: के लिए घर पे ही आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शुद्ध चीज मिलेगी।
1: अच्छा।
2: अब मसाले हैं, मसाले पिसवाने के लिए भी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, जो हमारे खुद के मसाले भी हम पीस के रखते हैं वो भी हमारे घर से ही लोग खरीद के ले जाते हैं, या अगर उन्हें अपने पिसवाने होते हैं तो अपने पिसवा लेते हैं। आटा चक्की हमारी है, तो आटा चक्की पर हमारी इतनी आटा बिकता है, उन्हें ये पता है कि शुद्ध मिलेगा, कोई मिलावट नहीं है। रोज लगभग 10 से 15-20 धड़ी आटा हमारा जो है बिक जाता है।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात है कि इतना बड़ा आपने सेटअप तैयार किया हुआ है, इसको मैनेज कैसे करते हैं?
2: देखिए, ये तो सब जो है हमारे पिताजी ने इसे सबको स्थापित किया है। वो बहुत पहले के जो है बीए पास हैं, तो वो जागरूक खेती पहले से ही करते थे गांव में, जो है उनका पहले से भी नाम था। और अब जब से ये चौरीकरण हुआ है गन्ने में, तब से जो है उन्होंने छोटा ट्रैक्टर भी लिया है, तो उस हिसाब से जो है पिताजी के दिशा निर्देशन में हमने बहुत अच्छी खेती आगे बढ़ाई।
1: बिल्कुल। तो जी, अब आपके देखिए पशुओं की बात करते हैं, तो कौन कौन

0: नस्ल के आपके पापा पशु हैं?
1: हमारे पास गिर नस्ल के पशु ज्यादा हैं, गिर और एचएफ
0: गाय।
1: गाय हैं, और मुर्रा नस्ल की भैंसें हमारी तीनों, जो लगभग जो है 8 से 15 केजी दूध की हैं। गाय हमारे पास 15 से 20 केजी दूध की गाय हैं।
0: जी, तो अब आपके हम पशुओं पर आते हैं, किस तरह से देखभाल उनकी करते हैं?
1: हम पूरी देखभाल उन्हें नहलाना धुलाना हमारा पूरा तीनों भाई मिलके, हमारे बच्चे भी साथ में हमारा सहयोग करते हैं। तीनों भाई मिलके उन्हें हम 2 बार, अभी तो जैसे अब मौसम बदल रहा है तो 1 बार रेगुलर सब जानवरों को नहलाना, उन्हें समय पर चारा देना, उनकी जो है हम डॉक्टर को भी बुलाकर उनकी समय समय पर ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीड़ों की दवाई देना, हर टाइम हम उनके जो है साथ में पशुओं के साथ बात करते रहते हैं।
0: अच्छा, तो ये राती मिश्रण भी आप देते होंगे?
1: जी जी जी
0: तो क्या क्या देते हैं उसमें?
1: जी हमारे यहाँ जो है सरसों की खल, हम जो कि हमारी घर की खल है, तो साथ में खल है हमारी, हमारी खुद की आटा चक्की है, तो दाना भी हम जो है वहीं से लेते हैं। दूसरा हम मक्का, हम लाके मक्का पीस के जानवरों को मक्का जरूर देते हैं।
0: अच्छा
1: मक्का से जो हमारे पशु हैं वो कमजोर नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं।
0: अच्छा मैं जैसे देख रहा हूँ आपके यहाँ बहुत सारे सेब रखे हैं, एक मतलब एक कट्टा भर के रखे हैं पूरा बैग,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: ये क्या है?
1: नहीं वो दरअसल अभी मंडी गए थे तो मंडी में जाते रहते हैं, तो मंडी में जो चीज अच्छी मिलती है, तो अब पूरा परिवार है तो अब थोड़ी बहुत चीज से तो कोई फायदा ही नहीं है, तो 1 कुंटल सेब थे उन्होंने हमें जो है सस्ते दाम में दिए, 15 रुपए केजी पड़े,
0: अच्छा,
1: तो हम पूरा 1 कुंटल सेब उठा लाए।
0: तो ये पशुओं को भी खिलाते हैं अपने आप
1: हाँ
0: ही?
1: पशुओं को भी खिलाते हैं क्योंकि वो सब तो स्वस्थ सेब नहीं है, उसमें कुछ खराब सेब भी हैं, तो वो उनको गाय भैंस को खिला देते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी पिछली बार जब गए थे तो कद्दू, जो लाल फूल का कद्दू था, वो दो
0: काशीफल।
1: काशी फल जिसे बोलते हैं, वो 2 कुंटल हम जो है लेके आए थे, वो सब पशुओं को खिला दिया है। समय समय पर जैसे भी कोई, अब सर्दियों का मौसम आएगा तो अब गाजर भरपूर मात्रा मिलेगी, तो ये गाजर जो है हम समय समय पर लाकर पशुओं को खिलाते रहते हैं।
0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छी बात है, मतलब पशुओं का भी जैसे इंसान का है उसी तरह का ख्याल रखते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी बिल्कुल, पशु में भी तो वही बात है जो इंसानों में है, इंसान तो बता देते हैं, पशु तो कुछ भी नहीं बता पाते, तो इसलिए हम पहले से पहले पशुओं की हर चेकअप समय समय पर कराना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बात से, कुछ पशु के अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर को बुला के चेक कराना। अभी लिम्पी बीमारी आई थी हमारे एक गाय, उसमें ग्रस्त हुई।

0: ये हम उसी से तो दूध ले रहे हैं, पहले तो दूध उसका। पहले हम देखो, लगभग लोग ये मानते हैं, कहते भी हैं कि ज्यादा दूध दे देंगे तो बच्चा मर जाएगा। हम ये मानते हैं कि ज्यादा दूध उसका है, थोड़ा हमारा है। हम लगभग 2.5-3 महीने तक उसे फ्री करते हैं, पियो जितना पीना है, उसके बाद जो छोड़ता है वो हमारा है। फिर हम उसके बाद धीरे धीरे उनका कम करते हैं, जब वो चारा खाना शुरू कर देता है 3 महीने के बाद, तो उसका दूध कम कर देते हैं और हमारा दूध बढ़ा लेते हैं ताकि अब हमें मिल सके।
1: ठीक है। अच्छा, देखिए, आपका जो मसाले की बात आपने की थी, तो ये मसाले आप जो साबुत बाजार से लाके पीसते हैं या अपने घर में पैदा करके?
0: नहीं, ये बाजार से लाके साबुत मसाले, जैसे लाल मिर्च हुई, धनिया हुआ, नमक हुआ, काला नमक हुआ, ये हम जो है बाजार से लाके पीसते हैं और लोगों को शुद्ध और मुनासिब रेट में जो है हम लोगों को यहाँ पे गांव में ही सप्लाई देते हैं। बहुत नजीबाज से, बहुत दूर दूर से जो फेरी करने वाले हैं वो भी हमारे यहाँ से सामान लेके जाते हैं।
1: अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ देखिए, आप हार्मोन पालन या इस तरह का और कोई भी काम करते हैं क्या?
0: नहीं, अभी इस विषय में तो जो है नहीं ध्यान पहुंचाया है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे जो है चलने की। अभी जो है हमारे विचार ये बन रहा है कि हम मधुमक्खी पालन के लिए, हमारे दिमाग में है,
1: अच्छा,
0: तो अभी हमने पूरी उसकी पहले उस पर सर्च करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, तब जाके हम, क्योंकि जो हमारी सरसों की फसल होती है बाग में, हम जो है इसे स्टेबल करना चाह रहे हैं।
1: अच्छा, आपके घर के पास में एक बड़ा सा तालाब है, तो
0: जी,
1: ये मतलब मछली पालन के लिए है कैसे?
0: ये सिंगाड़े के लिए था तालाब जो है, क्योंकि इसकी निकासी बहुत तकड़ी है,
1: अच्छा
0: ये तालाब निकल जाता है बारिश में,
1: अच्छा
0: तो इसमें मछली रुक नहीं पाती है,
1: अच्छा
0: तो इसलिए ये तो सक्सेस नहीं हो पाया। पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है मिलके एक सामूहिक रूप से काम किया था, ग्रुप बनाया था, एक समुदाय बना के उसमें हमने काम किया था, लेकिन उसमें हमें मुनाफा नहीं हो पाया, क्योंकि वो सारी मछलियां बरसात में सब निकल के नदी में चली गई, बह गई।
1: तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के कई काम आप करते हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: इस काम में आपका आपसी तालमेल कैसा है, भाइयों का या परिवार
0: नहीं, हमें तो
1: का?
0: हमारे सबके काम फिक्स है,
1: अच्छा।
0: किसे क्या काम करना है, किस वक्त करना है, सबको अपना अपना काम पता है, उसमें कोई राड या कोई बात होती ही नहीं है, सबको पता है कि ये काम हमारी जिम्मेदारी में होना है तो होना ही है।
1: अच्छा, आप
0: तो
1: देखिए, अक्टूबर में आप गन्ने की बुआई करते
0: जी,
1: होंगे,
0: गन्ने की बुआई की तैयारी चल रही है।
1: तो उसके साथ साथ क्या क्या बोने का विचार है?
0: अभी हम, हमारा जो इस बार जो एम है हमारा, वो मसूर बोने का है। मसूर के लिए हमने दाल, जो
1: बीजी,
0: मसूर है बीज है, वो हमने मंगवा ली है, क्योंकि हम उसे दाल बनाने के इच्छुक हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि जो है मसूर तो बिकी है, पहले भी हमने बोई थी, बिक जाती है, लेकिन जो अच्छी दाल है वो हम निकाल के खुद से ही चक्की में, अगर हम उसे दलने का, हमारे दिमाग में ये है कि दाल बनाएं इस बार।
1: अपने सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एकीकृत खेती किस प्रकार की है ये?
0: नहीं, ये तो बहुत लाभकारी खेती है, एकीकृत खेती। देखिए, एक ही चीज के पीछे यदि हम होंगे तो इनकम नहीं हो, मिलके सब, जैसे सामूहिक परिवार होता है, मिलके काम करते हैं, ऐसी ही एकीकृत खेती एक सामूहिक खेती है। सब सारी तरफ से अगर आमदनी होगी, हर चीज से इनकम होगी, तो उससे लाभ होगा। साथ में पशुपालन भी है आपके, आपने और कुछ उपकरण भी लगा रखे हैं, आपने जैसे चक्की लगा रखी है, स्पेलर लगा रखा है, आटा चक्की के साथ साथ मसाले की चक्की भी है, और भी, और विचार और भी आ रहा है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ मधुमक्खी पालन का है, तो ये सब चीजें अगर हम एक साथ मिलके करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, टाइम उतना ही खर्च होना है, जब हम यहाँ पर काम कर ही रहे हैं तो टाइम तो लगना ही लगना है उतना, तो क्यों ना जो है ज्यादा काम किया जाए।
1: जी, तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा काम है।
0: जी, इसमें कोई ये नहीं कि लोग ये कहते हैं, बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि खेती की तरफ से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत कहो कि खेती की तरफ से पलायन कर रहे हैं, खेती के साथ दूसरी चीजों को जोड़ो, खेती के साथ और बहुत सारे साधनों को जोड़ लो तो खेती लाभकारी है,
1: जी,
0: और अकेले खेती के पीछे अगर लगोगे तो शायद जो है इतना लाभ मुनाफा ना हो पाए।
1: बिल्कुल। देखिए, आपने हमसे विस्तार से इस सब्जेक्ट पर बात की, इस विषय पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा है, नमस्कार।
2: एकीकृत खेती का महत्व, गंगाराम भैया, इस संबंध में आपने द्विजेंद्र कुमार, सफल कृषक, से बहुत बढ़िया बातचीत की। और भैया, अब हम समझ गए कि हम एक खेत में एक समय में कितनी खेती कर सकते हैं।

0: देखो भाई, बात यूँ निकल का आई कुल मिलाकर कि भैया अब जमाना ऐसा आ गया
1: जी
0: कि
1: जी
0: जोत तो छोटी हो गई और भैया खर्चे बढ़ गए,
1: बिल्कुल
0: तो अब घटती जोत और बढ़ते जो हमारा जो जरूरत है
1: हाँ
0: उनकी पूर्ति के लिए वैज्ञानिक तरीकों से अब खेती करने की जरूरत आ गई।
1: बिल्कुल भाई। देखो, हम तभी तो बार बार कहते हैं कि भैया हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो कृषि के वैज्ञानिक हमें सलाह देते हैं उनकी सलाह को मानना चाहिए, और खेती के साथ साथ हमें दूसरे काम जरूर करने चाहिए। खेती का विविधीकरण करना चाहिए, तभी जाके भैया हम अपनी आजीविका सही ढंग से चला सकें।
0: बिल्कुल, देखिए बहुत सारे किसान भाई भैया पॉली हाउस लगाते हैं
1: जी
0: और उसमें भैया सब्जी उगाते हैं, भैया फूल उत्पादन करते हैं और भाई उससे बहुत तगड़ी आमदनी ले रहे हैं। किसानों के लिए भैया सरकार भी साथ साथ खड़ी है,
1: बिल्कुल भैया।
0: वो उसको बहुत सारी सब्सिडी भी देती है। तो अब जमाना ऐसा आ गया भैया कि थोड़ी जमीन में आप भयंकर उत्पादन ले सकते हैं और विश्व में अपना नाम कर सकते हैं। अपने जो उत्पाद हैं उनको भैया दुनिया के किसी भी कोने में आप बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखो भाई, जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें हमें ये नहीं सोचना, जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं का दाना हमने रख लिया, उसका भूसा गेहूं का जो है वो हमारे पशुओं के काम आ रहा है। और इसके अलावा भी देखो, भूसे के हम दूसरे काम कर सकें भैया। उससे अगर हम मशरूम उत्पादन करना शुरू कर देंगे तो भाई फिर तो कहने ही क्या है, एक बहुत बढ़िया खेती बाड़ी करके और भैया हम अपना नाम कर सकें।
0: बिल्कुल, तो कुल मिला के देखिए बात ये निकल के आई कि अब हमें साथ साथ केवल गन्ने पे, गेहूं पे, धान पे ही निर्भर नहीं रहना है, अपने चारों तरफ भैया देख के, हालात देख के और भैया खेती करनी है। तो भाई बातचीत तो बतेरी हो गई
1: हाँ
0: दोनों
1: हाँ हाँ
0: भैया, अब कहो तो कुछ, लेकिन
1: गीत संगीत होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना?
0: पहले सुनवाते हैं ये संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: LIC की अमृत बाग ये 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच मैच्योर्ड होती है और आपको देती है सिंगल या सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प। LIC, हर पल आपके साथ।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: तन से मन की हुई लड़ाई होया मुकदमा भारी। भाई आपने भैया मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज में बड़ी प्यारी सी रागनी सुनी।
1: हाँ भैया, देखो रागनी सुन के तो आनंद आ गया, और भाई हमारे सभी किसान भाई और बहनों को भी रागनी अच्छी लगी होगी। हमारा आज का कार्यक्रम उन्हें अच्छा लगा होगा। और भाई देखो, वो चिट्ठी तो हमें लिखेंगे, पता भी हम उन्हें बताएंगे, पर आप पहले ये मौसम की चिट्ठी जो लियो बैठे, मौसम की बात बता दो।
0: देखो भैया, मौसम की चिट्ठी मिली है ग्रामीण मौसम सेवा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से भैया हमें प्राप्त हुई है।
1: अच्छा, क्या लिखा
0: इनके
1: भैया?
0: अनुसार भैया आगामी 10 तारीख तक भैया हल्की हल्की छिट्टेदार बारिश कहीं हो सकती है,
1: अच्छा
0: यानी कि हल्की बारिश होने की संभावना है। और ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए भैया अपने खेती किसानी के काम करें, यानी कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो आप मुंजी की कटाई ना करें, और भैया अगर कटाई करनी पड़ी रही है तो भैया 7-7 इंच ऊपर से भैया करें।
1: बिल्कुल भैया, तो देखो ये तो आपने मौसम की जानकारी दे दी। और भाई अब हम अपने किसान भाइयों को बता दें कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2463।
0: तो भैया इस पते पे हमें आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। इसके अलावा भैया अगर आप किसी कारण से खत नहीं लिख पा रहे और आपकी कोई भी खेती किसानी पशुपालन बागवानी आदि संबंधित समस्या है, या भैया कोई हमें सलाह मशवरा देना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से भैया माह के पहले शुक्रवार को कार्यक्रम होता है हेलो किसान,
1: बिल्कुल
0: और माह के तीसरे शुक्रवार को कार्यक्रम हमारा होता है हेलो गन्ना किसान।
1: जी, और नंबर आप जानते ही हो, नंबर है 94-570-78-288।
0: बिल्कुल, तो इनमें से भैया एक नंबर और भी है 0-13-41-230-105 हमारा कोड है, इनमें से किसी एक भी नंबर पर आप फोन करके हमसे जो है अपनी बात साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और भाई देखो बातें करते करते कार्यक्रम का समय भी लगभग पूरा ही हो गया है, तो कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं और किसान भाई और बहनों से कर लेते हैं
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, विविधा क्रम में लीजिए अब सुनिए देवकी नंदन शर्मा की वार्ता, जिसका विषय है साहित्य और भारतीय परंपरा।
1: साहित्य सार्वभौमिक सत्ता है, यह कथन जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि साहित्य पर संबद्ध देश एवं समाज की सांस्कृतिक परंपराओं तथा जीवन मूल्यों की गहरी छाप होती है। इस दृष्टि से भारतीय साहित्य की अपनी निजी विशेषताएं रही हैं जो उसके अस्तित्व को प्रकट करती हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन स्मरणीय है। सर्वप्रथम जब भारतीय सभ्यता का विकास हुआ, लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटकर नहीं बैठे, उन्होंने भीड़ नहीं जमा की। यहाँ वृक्ष, नदी, सरोवरों का मनुष्य के साथ योग बना रहा। यहाँ मनुष्य भी था, निर्जन स्थान भी था, और इस निर्जनता से भारत का चित्त जड़ नहीं हुआ, वरन उसकी चेतना और भी उज्जवल हो उठी। हम कह सकते हैं कि शायद दुनिया में कहीं ऐसा ना हुआ होगा। निश्चित ही गुरुदेव ने शायद दुनिया में कहीं और ऐसा ना हुआ होगा कहकर भारतीय साहित्य की उस सनातनी पहचान को रेखांकित कर दिया है जिसमें सामासिक संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब, अहिंसा परमो धर्मः, आत्मवत् सर्वभूतेषु, वसुधैव कुटुंबकम् जैसी विशिष्टताओं का अद्भुत खजाना भरा पड़ा है। वस्तुतः मनुष्य, मनुष्येतर का सह अस्तित्व, प्रकृति से मैत्री, स्त्री गौरव, पुरुषार्थ, चतुष्टय, समन्वयात्मकता आदि रूप भारतीय साहित्य के भाव जगत के अभिन्न एवं

0: अविच्छिन्न अंग रहे हैं। इन्हीं से भारतीय साहित्य विश्व में विशिष्ट बन पड़ा है। इसीलिए मोहम्मद इकबाल को गुनगुनाना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतिहास साक्षी है कि यूरोप के उपनिवेशवादी और मार्क्सवादी लेखकों ने इतिहास और साहित्य के लेखन में अपने विचारों का जो जाल रचा, उसे ही आधुनिक वैज्ञानिक और विश्व स्तरीय मानकर अधिकांश आधुनिकतावादी भारतीय लेखक उलझते रहे हैं। मगर वास्तविक रूप में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय से लेकर बंकिम चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी आदि के चिंतन और लेखन पर यदि गौर करें तो उनमें पाश्चात्य चिंतन के वर्चस्व से अपने अपने ढंग से मुक्त जीवन होकर अपने इतिहास, संस्कृति और साहित्य को भारतीय दृष्टिकोण से देखने परखने के पुष्ट अनुष्ठान के दर्शन होते हैं। इस आलोक में हमारा प्राचीन और आधुनिक साहित्य भारतीय परंपरा का सवल संवाहक दृष्टिगोचर होता है। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संगीत प्रतिबिंब होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत भारतीय चित्तवृत्ति का विराट दिग्दर्शन है। रामायण की कथा अपहृत सीता का उद्धार एक बहाना है। पूरे मानव समाज को रावण के स्वेच्छाचार से, अत्याचार से मुक्त कराना ही उस युद्ध का प्रमुख प्रयोजन है। इसी प्रकार महाभारत भी मानव जीवन का महाआख्यान है, जिसमें नगर, गांव, वन, पवन, नदियां, सुर, असुर सब हैं। ऐसा होने का कारण है वह भारतीय चिंतन है, जिसमें मनुष्य की वीरता पराक्रम से अधिक महत्व पूरी सृष्टि के साथ सनशक्ति भाव रहा है। इसी प्रकार रामायण महाभारत भारत की समावेशी चित्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने वाली कालजयी कृतियां हैं। साहित्य की भारतीय परंपरा का एक विशिष्ट आयाम मनुष्य और मनुष्यतर के संबंधों की सहज स्वीकृति भी रहा है। आदि कवि वाल्मीकि का आदि श्लोक माम निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः स्वास्थ्य समः निष्ठुर मनुष्य के बरबक्स एक मनुष्यतर प्राणी पक्षी क्रौंच के साथ क्रूर कर्म के विरोध में प्रस्फुटित है। महाभारत की कथा का अंत धर्मराज युधिष्ठिर के मनुष्यतर प्राणी श्वान के साथ स्वर्गारोहण के साथ होता है। कुमार संभव में कालिदास पर्वत शिरोमणि हिमालय के स्मरण से ही काव्य का आरंभ करते हैं। आधुनिक युग में छायावादी काव्य धारा तो मनुष्य मनुष्यतर सह संबंधों का विराट उपक्रम है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत तो द्रुमों के मृदु छाया को छोड़ मायाजाल में अपने द्रगों को उलझाना नहीं चाहते। सत्य तो यह है कि मनुष्य और मनुष्यतर सह संबंध मनुष्य के रागात्मक संबंधों का रक्षा कवच बनकर भारतीय साहित्य को दात पीठिका प्रदान कर रहे हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी साहित्य की भारतीय परंपरा विशिष्ट रही है। यह मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ स्त्री को दासी, निजी संपत्ति, भोग्या मानने वाली धारा रही है। लेकिन स्त्री शक्ति, प्रतिष्ठा, महत्ता, सम्मान को स्वीकार करने वाली परंपरा का भी अभाव नहीं है। जिस मध्यकालीन यूरोप में स्त्रियों के प्रति कठोरता बरती जा रही थी, उस मध्यकाल में ही भारत में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा स्त्री श्रेष्ठता का प्रतिपाद करने वाला महाकाव्य पद्मावत लिखा जाता है। सूरदास और अन्य भक्त कवियों द्वारा स्त्रियों की प्रेम स्वतंत्रता का चित्रण किया जाता है। रीतिकालीन काव्य तो स्त्री स्वच्छंदता का पर्याय ही बन गया। आधुनिक युग में साकेत, कामायनी, उर्वशी और कनुप्रिया आदि चर्चित कृतियां स्त्री विमर्श के अद्यतन संदर्भों को प्रतिष्ठित करने में हमेशा अग्रगणी रही हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म, काम और मोक्ष के साथ अर्थ को भी सम्मिलित कर पुरुषार्थ जीवन के चार स्तंभ माने गए हैं। इन पुरुषार्थ चतुष्टय से समन्वित समग्र जीवन की अभिव्यक्ति में महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत जैसे साहित्यिक ग्रंथों का स्मरण बार बार किया जाता है। इसकी स्वाभाविक परिणति के रूप में राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति आदि के भी विवेचन समय समय पर विन्यसत होते रहे हैं। नाटकों, काव्यों, कहानियों में भी मानव जीवन से संबद्ध नाना विचारों, भावों, संबंधों के साथ साथ राज्य और सत्ता के, प्रजा जनता सापेक्ष दायित्वों के महत्वपूर्ण दिग्दर्शन के दृश्य मिल जाते हैं। मध्ययुगीन महाकवि तुलसीदास का ये दोहा द्रष्टव्य है, बरसत हर्षत लोग सब करपत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई। भारतीय संदर्भ में साहित्य पर विचार करते हुए इस तथ्य को सदैव स्मरण में रखा जाना चाहिए कि यहाँ का सामाजिक जीवन और उससे निर्मित हुई संस्कृति का चरित्र मुख्यतः समन्वयात्मक समावेशी रहा है। अतएव उसको प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति समन्वय समावेश की ही रही है। इस तथ्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध अशोक के फूल में बहुत दृढ़ता के साथ उजागर किया है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे सूर्य और चांद का दिन और रात का होना शब्दों की बाजीगिरी से झुटलाया नहीं जा सकता, वैसे ही भारतीय साहित्य के समन्वयात्मक सामाजिक स्वरूप को भी नहीं झुटलाया जा सकता। भारत की चित्त और मानस में समन्वयात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण ही हमारे यहाँ शिष्ट या नागर साहित्य और लोक साहित्य जैसे विभाजन की कोई परंपरा नहीं रही है। सच तो यह है, ऋग्वेद और उपनिषदों से लेकर जैन बौद्ध तांत्रिक मतों सिद्धांतों सिद्ध संतों के दोहों सिख गुरुओं की वाणी और सूफी संत फकीरों कवियों की दृष्टि में इस विशिष्टता का प्रवर्तन आगे जाकर अनेक रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। कामायनी जैसे आधुनिक महाकाव्य में आनंदवाद और समरसता का जो दर्शन सम्मूर्तित हुआ है उसकी जड़ें भारत में ही विद्यमान है। यह कहना भी प्रासंगिक है कि आए दिन पश्चिम से आयातित आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावाद संरचनावाद उत्तर संरचनावाद लिंगवाद अस्मितावाद विखंडनवाद जैसे विमर्शों के कारण हमारे देश समाज में तनाव आपसी विद्वेष संघर्ष हिंसा की प्रवृत्ति तेज होती जा रही है। तब सबको एक रागात्मक सूत्र में बांधने वाली समन्वयात्मक समावेशी अंतः ग्रथित संश्लिष्ट भारतीय परंपरा का महत्व साहित्य और जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे भारतीय लेखक बुद्धिजीवी भारतीय परंपरा के वैशिष्ट्य को समझें तथा सदियों से भारतीय चित्त मन और प्रज्ञा को संचित करने वाले संस्कारों आस्थाओं से निर्मित जीवन बोध को आत्मसात करते हुए साहित्य का सृजन करें।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन शर्मा की वार्ता, जिसका विषय था साहित्य और भारतीय परंपरा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 6:55 हो रहे हैं और अब ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम छाया गीत का। श्रोताओं, सुरमई शाम की इस बेला में मैं हूं आपके साथ राजवीर सिंह। आज हम यादों के झरोकों से कुछ ऐसे नगमे लेकर आए हैं जो सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं साल 1980 की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से, जिसके गानों ने हर महफिल में जान फूंक दी थी। जी हाँ, फिल्म थी फिर वही रात। आर डी बर्मन साहब का थिरकता हुआ संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे मस्त मौला बोल और उस पर मोहम्मद रफी साहब की जादुई आवाज। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। महफिल में रौनक तो दोस्तों के आने से होती है, महफिल में रौनक तो दोस्तों के आने से होती है, जिंदगी की हर शाम फिर मुस्कुराने से होती है।

फिर वही रात। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को, मजरूह का गीत था और आर डी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, रफ़ी साहब की आवाज़ का ये जोश आज भी रगों में नई ऊर्जा भर देता है। चलिए, इस जोश के बाद अब रुख करते हैं रूमानी गलियों का। मोहब्बत का जिक्र हो और साहिर लुधियानवी साहब की शायरी ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। साल 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिशूल का एक ऐसा गीत जिसे खयाम साहब ने बेहद सादगी और गहराई से संगीतबद्ध किया था। सुर को किला लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज़ों में ढला ये गीत सीधे रूह को छू जाता है। उनकी जुल्फों की छाँव में दिल खोसा जाता है, उनके जुल्फों की छाँव में दिल खोसा जाता है, वो मुस्कुरा कर देख लें तो हर कोई आशिक हो जाता है।

लता मंगेशकर और यसुदास की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल का ये खूबसूरत सा गीत। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत खयाम का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। शाम ढल चुकी है और छाया गीत के इस पड़ाव पर अब वक्त है हमारे आज के इस कार्यक्रम के आखिरी नगमे का, जो हमने लिया है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। हाथों में हाथ हो और सदियों का सफ़र हो, तू मेरा हम सफ़र हो, मुझे बस यही फिक्र हो।

श्रोता मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म तुमसे अच्छा कौन है कि इस गीत के साथ ही आज का यह कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय संध्या के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है, 9:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे शाम 7:32 पर। शाम 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत के अंतर्गत बेगम अख्तर की गाई चंद गजलें। और रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। और अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों पर। कंट्रीवाइड और इनसाइट्स, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कल रात 9:30 पर। अमन कुमार द्वारा लिखित रूपक जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। कल शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा अजीम और सुजात की गाई कव्वालियां। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का 30वां एपिसोड आप सुनेंगे कल शाम 6:50 पर। हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत कल शाम 6:05 पर। और युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। विशेष श्रृंखला जनसेवा के 25 साल के अंतर्गत कल शाम 5 बजे आपको बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कल शाम 4 बजे। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल प्रातः 9:15 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल अपराह्न 1:45 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत। लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत नयनतारा शर्मा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे कल प्रातः 9:25 पर। ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ की सजीव प्रस्तुति होगी कल प्रातः 7:32 पर। महिला जगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल दिन में 1:15 पर। और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल पूर्वाह्न 11:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। कहा, जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। इस मौके पर आज उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात

0: मंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का समय है। उन्होंने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा।
0: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की, और इसलिए आज हर भारतवासी के लिए, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए गौरव का क्षण है।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, नेतृत्व, नीतियों और शासन मॉडल पर आधारित पुस्तकों का एक मंच पर लाने वाले नमो बुक फेस्ट जन वी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम यात्रा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी

0: पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं, तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती
1: है। प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अके आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से श्री आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे और ये गलियारा उस अमृत पर्व की पहली भेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
3: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। अब भारत जापान की साझेदारी भविष्य के क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा।
2: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अके आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय रणजी टीम का ऐलान कर दिया है। आर्यन जोयल की कप्तानी में टीम में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ लखनऊ के जीशान अंसारी, करण शर्मा, प्रशांत वीर, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण, कहा जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्री राकेश चंद्रा से की गई अतिश कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, विषय शांति एक्ट ऊर्जा पर आधारित।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हमारे देश में आवश्यकता है ऊर्जा और ऊर्जा संवर्धन के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, तो अभी दिसंबर 2025 में एक शांति एक्ट बनाया गया है, तो ये क्या है, कैसे काम करेगा या क्या गाइडलाइंस है इसके पास, इस विषय पे अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डॉक्टर राकेश चंद्रा को। आप पूर्व ISB हैं और PD से जुड़े हैं और इस पर उन्होंने डॉक्टरेट भी की है। डॉक्टर साहब का स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि ऊर्जा की क्या जरूरत है देश में और इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी?
3: सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा देश

इस समय विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे देश के नीति निर्माताओं का कि बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं। पर इसके लिए जो आवश्यक है ये कि अगर हम अपने उद्योगों को जितना बढ़ा सकें, हमारे उद्योग जगत को इतनी ऊर्जा मिल सके, क्योंकि उद्योग चलते हैं ऊर्जा पर। और इसके अलावा अभी कंप्यूटर्स पे आजकल बहुत काम हो रहा है, कंप्यूटरों को चलाने के लिए हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो डाटा इकट्ठा होता है डाटा सेंटर्स के लिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता। वर्तमान में जितनी ऊर्जा हमको मिल रही है वो बहुत कम है, प्रति वर्ष 3 गुना ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है मांग में, और अभी तक हम लोग जो हैं वो अपनी ऊर्जा का 70% केवल हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम दोबारा नवीकरण नहीं कर सकते या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको। 70% ऊर्जा जो हमको मिल रही है, जो हम फॉसिल फ्यूल जैसे कहते हैं, जो जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा है, ये धीरे धीरे अब सब स्रोत इसके समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। साथ में जो तापीय ऊर्जा है जो कोयले से मिलती है, वो उससे पर्यावरण संकट बहुत तगड़ा आ रहा है। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, जिससे ओजोन होल की समस्या आ रही है, और ये जो जलवायु संकट है ये बहुत तगड़ा और गहराता जा रहा है। कोयले को तो अब हम धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर इसका विकल्प क्या है? क्योंकि पानी जो बड़ा स्रोत है वो जल विद्युत है, जिसे हाइड्रल पावर कहते हैं। इसमें